0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो
2: आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन
3: Y'all know what it is. Lua Synthesis Rock Universal.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron.

जाने मैं तो मेलीरा उन जाने को मैं किन्हों टीम उकिना गो इगा मैं तो मेलीरा वानों पु मैं मैं उन्हों जग

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: अनदर एमजीईएन सेंड थिंग्स चैट मीडियम इजी डिलीवरी कॉल जीनो जीनो सी मास्टरमाइंड एडी विजी
3: ट्रिकी